0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व

0: और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं, 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोते आपले प्रसन्न सकाळ सुरेल करणारी आकाशवाणी धाराशिव केंद्राची ही प्रसारण सभा आपण ऐकतोय। FM 101.3 मेगाहर्ट्सवर आणि प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर सकाळचे 6:05 झाले आहेत। प्रसारित करीत आहोत मंगल प्रभात हा भक्ती संगीताचा कार्यक्रम।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBO 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोस की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें।

0: रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों के जय बन

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं ना कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया

0: प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी है। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोते आपले प्रसन्न सकाळ सुरेल करणारी आकाशवाणी धाराशिव केंद्राची ही प्रसारण सभा आपण ऐकतोय। FM 101.3 MHz वर आणि प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर सकाळचे 8:15 झाले आहेत। प्रसारित करीत आहोत लखलख चंदेरी हा कार्यक्रम। श्रोते हो, आज महान पार्श्वगायक मुकेश यांचा जन्मदिवस आहे। 22 जुलै 1923 रोजी त्यांचा जन्म झाला। मुकेश यांचं संपूर्ण नाव मुकेश चंद माथुर असं होतं। दिल्लीतील दरियागंज आणि चांदनी चौक इथे त्यांचं बालपण गेलं। 10वीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी लोककल्याण विभागात PWD नोकरी करायला

आपने ट्यून किया है विविध भारती और सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं बागी फिल्म का गीत, मोनाली ठाकुर और मीत ब्रोज की आवाजों में, कुमार की रचना, मीत ब्रोज का संगीत।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और प्रीतम का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए अख्तर चन्नाल की आवाज में। फिल्म का नाम फैंटम।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: हेट स्टोरी 3। इस फिल्म का गीत अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में, रश्मि विराग ने इसे लिखा है, अमाल मालिक का संगीत।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत। अश किंग की आवाज साथ दिया है शशा तिरुपति ने। इस गीत को लिखा है अराफात महमूद और तनिष्क बागची ने, संगीत तनिष्क बागची का।

एआर रहमान और श्रीनिधि वेंकटेश की आवाजों में अभी आपने सुना ओके जानू फिल्म का ये गीत, गुलजार के बोल थे और संगीत था एआर रहमान का। इस गीत के साथ ही आज के इस चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र।

0: रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
2: मैंने

मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और मां थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहां आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश

इस जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली फिल्म

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949

सन 1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

0: घर है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ गाइए।

सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहां हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए।

ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नयन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

0: सन 1962 में चलते हैं, जब मनोज कुमार मुकेश की आवाज के जरिए पर्दे पर होंठ हिलाते हुए कह रहे हैं,
1: इफ

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुनगुनाए।

0: याद।
1: यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976 डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: जाना कहां। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आज की जो इबारत है, भारती के फेसबुक पेज पे हमने पोस्ट की है, जो आप लोगों ने पढ़ी है, उस इबारत को हम यहाँ पढ़ के आपको सुनाते हैं। इंसान अपने जीवन में कई परिस्थितियों का सामना करता है, कभी सफलता, कभी संघर्ष, कभी असफलता। अंतिम परिणाम तो बाद में आता है, पर इंसान की पहचान उसके धैर्य और साहस से होती है। हर ठोकर के बाद भी चलते रहना और व्यक्तित्व को गढ़ना अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब कोई हृदय तोड़ दे, जब कोई चांदी की दीवार छोड़ दे, जब दोस्त दोस्त ना रह जाए, जब बहारें भी चमन लूट लें, जब वक्त भी वफा करना छोड़ दे, जब समझ में ना आए कहाँ जाए, तब एक जादुई रूहानी आवाज़ हमारा दामन थाम लेती है। उस आवाज़ का दामन थामे हम अपने एहसासों को बड़ी शिद्दत से बयां करते हैं और कहते हैं, भूली हुई यादों हमें इतना न सताओ, क्योंकि हमें ये पता है दुनिया बड़ी है संग दिल। बताइए कौन सी है वो आवाज़ जिसने जिंदगी के मायने समझाए और मुश्किल समय में हमें आवाज़ दी। जी हाँ, आपको अपने बारे में भी बताना है कि आपके लिए वो कौन सी आवाज़ है। एक हमारे साथी ने बहुत प्यारी बात लिखी है, लिखते हैं कि मुकेश जी की आवाज़ दर्द की वो स्याही थी जो कागज़ पर नहीं सीधे दिल पर उतर जाती थी। वो न ऊँचे सुरों के जादूगर थे, न शब्दों के बाजीगर, वो बस सच गाते थे। उनकी आवाज़ में वो थकान थी जो हर टूटे हुए इंसान के भीतर होती है, वो सन्नाटा था जो बिछड़ने के बाद कमरे में रह जाता है। उनके गाए दर्द भरे गीतों को सुनते हुए लगता है जैसे कोई अपना बहुत पास बैठकर बिना शिकायत किए बस अपनी कहानी सुना रहा हो। मुकेश जी ने दर्द भरे गीतों में खुद को जिया है, इसलिए जब रात भारी हो जाती है, जब आंखें भिगो देती है, जब सबसे पहले उनकी आवाज़ कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं हूं ना। जी हाँ, यही आपको बताना है कि जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, कई बार परिस्थितियां बहुत नकारात्मक होती है, हम परेशान होते हैं, लेकिन एक आवाज़ होती है या एक व्यक्ति होता है जिसकी आवाज़ सुन के, जिसकी बातें सुन के, या फिर जिसका हमारे सिर पर हाथ रख देना ही काफ़ी होता है और वो ये कहता है कि मैं हूँ ना, आप धैर्य रखिए है, और उनकी आवाज़ सुनकर मन को बड़ा संबल मिलता है। आप बताइए कि आपके जीवन में वो कौन सी आवाज़ है, वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा शख्स है जिनके वो प्यारे शब्द सुन के, जिनके मन को बहुत सांत्वना देने वाले जो शब्द होते हैं वो मिलते हैं और आपके मन को बहुत संबल मिलता है। चलिए पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गाना सुनते हैं, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये भी आपको बताना है।
1: कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़

क्या आपसे कभी किसी ने कहा है कि जब मुश्किल हालात हो तब मेरे पास आना और मेरे पास वो सुकून मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो? ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई आवाज़ आपके पास है तो उसे हमें बताइए। मनोज कुमार और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी की ये बात है कि निराशा के इन घने बादलों के बीच जब जिंदगी से भरोसा उठने लगता है तब रेडियो के किसी कोने से एक बेहद दर्द भरी रूहानी और मखमली आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ हमारे टूटते हौसले को संभालती है और गुजरे ज़माने की भूली हुई यादों को ताज़ा कर देती है। भले ही ये दुनिया बड़ी है संगदिल, लेकिन उस आवाज़ का जादू हर गम को सहने की ताकत देता है। वो दर्द के बादशाह और जज्बातों के जादूगर कोई और नहीं, हमारे अजीज मुकेश जी हैं, जिनकी आवाज ने हर तन्हा दिल को जीने का सहारा दिया है। एक साथी ने ये बात लिखी कि आज की इबारत के कण कण में मुकेश जी समाये हुए नजर आ रहे हैं। दर्द भरे करुण रस से परिपूर्ण गीतों के साथ मुकेश जी के कुछ और भी गीत हमें सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, गीत कई सारे हैं। और इसके पहले जो कार्यक्रम था यादों की महफिल, उस कार्यक्रम में हमने आपको लता मंगेशकर और मुकेश के गाए युगल गीत सुनवाए बहुत सारे, जिनमें बहुत हंसते खेलते गीत थे। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत हैं जो हमारे दर्द से जुड़े हुए हैं, या हमारे दिल के, या हमारे समय के बहुत मुश्किल हालातों से जुड़े हुए जो गीत हैं वो आपको सुनाई देंगे। चलिए, अगला गाना विश्वास फिल्म का गाना, मुकेश जी की आवाज़, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, जितेंद्र और अपर्णा सेन पर फिल्माया गया ये गाना।

हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि बचपन में माता पिता, बाद में वाइफ और सूरत में जब 2006 में पूर आया था यानी कि बाढ़ जब आई थी, तब मेरे अंकल यानी कि मेरे जो काका हैं उन्होंने मुझे कहा था मैं हूँ ना। एक साथी की ये बात है कि आज जो इबारत है इंसान के भीतर छिपे उस असीम धैर्य और जज्बे को सलाम करती है जो सबसे गहरे अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाए रखता है।

ये रूहानी और जादुई आवाज सदी के महान गायक मुकेश जी की है, जिनके गाए गीत जाऊं कहां बताए दिल की गूंज इस इबारत के हर लफ्ज को महसूस होती है। रिश्तों के धागे टूट जाते हैं और अपने ही पराए होने लगते हैं, तब मुकेश जी की आवाज़ किसी ठंडी छांव की तरह हमारा हाथ थाम लेती है। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि केवल सुर नहीं लगाते थे, बल्कि इंसान के एकाकीपन और इसके उसके भीतर चल रहे संघर्ष को अपनी आवाज़ में जी लेते थे। उनका वो सादगी भरा, दर्द से भीगा अंदाज भरोसा दिलाता है कि बिखर जाना अंत नहीं है, ठोकरें खाकर फिर से खड़े होना जिंदगी का असली नाम है। बहुत अच्छी बात है आपकी, धन्यवाद आपका। और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, देखिए कठिन समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, विपरीत परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन अपने आप को संभाले रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है। आप अपने आप को किस तरह से संभालते हैं, क्या कहते हैं आप अपने दिल को, अपने मन को किस तरह समझाते हैं? और ये भी हमने आपसे पूछा है कि कौन सी आवाज़ें हैं, कौन सी व्यक्ति हैं जिन्होंने आपसे कहा है कि हाँ मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे सवाल हैं, दो सवाल हैं, बताइए इसके बारे में। चलिए अगला गाना संगम फिल्म से है, शंकर जयकिशन का संगीत है और इसमें तीन कलाकार हमें दिखाई देते हैं, तो राज कपूर तो हैं ही, उनके अलावा दो और कलाकार हैं, वो कौन कलाकार हैं ये आप हमें बताइए।

राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी लिख रहे हमारे कि जब मैंने कक्षा 10वीं परीक्षा दी थी, लास्ट पेपर के दिन पापा का देहांत हो गया था। मेरे पापा निरंतर विविध भारती सुना करते थे और ऑल इंडिया रेडियो भी सुना करते थे। आज लगभग 30 वर्ष हो गए, मैं भी निरंतर रूप से विविध भारती सुनता हूँ और जब कभी परेशान में होता हूँ तब विविध भारती में एक हिम्मत दिलाने वाला गाना बज जाता है और कहीं से ये सुनाई देता है कि चिंता मत करो मैं हूं ना। एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे पास मुकेश जी के गाए गीतों की किताब आती थी जिसमें से हमने सारे गीत याद कर लिए थे, तो उनके तो सारे गीत ही हमारे फेवरेट हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि चांदी की दीवार ने तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, पैसे का महत्व धन की महिमा बखान करता है, ये गीत बता रहा है कि प्रेम में भी पैसे ने की है, पैसे की खातिर लोग कैसे दिल तोड़ देते हैं और अलग दुनिया बसा लेते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी के गाने की बात है तो दिल की गहराइयों में समा जाता है वो जो गीत है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुकेश जी का व्यक्तित्व उनके गायन की तरह ही अत्यंत सरल, विनम्र और सहज था। वे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जमीन जुड़े रहे, उनके उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे सहकर्मियों, संगीतकारों और अपने प्रशंसकों के प्रति आत्मीय व्यवहार रखते थे। उनकी सादगी और विनम्रता ही उनके व्यक्तित्व को और अधिक महान बनाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, देवर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। संगीत किसका ही आपको बताना है।

देवर फिल्म का ये गाना, इस गाने को संगीतबद्ध किया रोशन ने। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि जब हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए, हमारी तो मानो दुनिया ही ख़त्म हो गई। तब सहारा दिया हमारे कई अपनों ने, जिसमें सबसे ऊपर नाम हमारे पापा का है, उसके बाद बच्चे और कुछ प्यारे से दोस्त। सबसे ज़्यादा सहारा मिला विविध भारती का, जिसके साथ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय बीता और गीत जो शुरू से शामिल थे हमारी हमारी ज़िंदगी में। एक हमारे जो साथी हैं वो ये बात लिख रहे हैं कि मुकेश की आवाज़ का जादू बयां करते हुए कुछ प्रशंसक पंक्तियां लिख रहा हूँ। दर्द में डूबी वो आवाज़ जो रूह को छू जाए, मुकेश के गीतों में सारा जहां समा जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए कि धुन हर दिल को सुकून और गहराई दे जाए। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल ने पुकारा, इस फिल्म का गाना, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

मदन मोहन का संगीत बद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज़ की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो केवल एक गीत नहीं गाते थे बल्कि सुनने वाले के दिल का बोझ हल्का कर देते थे। जब वे गाते हैं चांदनी आई घर जलाने, तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें भी उस वक्त इंसान को तकलीफ दे रही है। ये आवाज़ हर अकेले और उदास इंसान को ये तसल्ली देती है कि इस दर्द में वो अकेला नहीं है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको आपको मिल ना सके सुबह के उजालों में। कुछ आवाज़ ऐसी रूहानी होती है ढूंढने से नहीं मिलती, गानों के माध्यम से कानों से होकर सीधे हमारे दिल में उतर जाती है वो आवाज़ मुकेश की। एक साथी हमारी लिख रही कि क्या आवाज़ थी वो, जब गम के साए घेरते तो चुपके से कहीं दूर रेडियो से झड़ती वो आवाज़ हमें अपने आगोश में ले लेती और हम कुछ देर के लिए गम भूल जाते। और सब जब सुख के फूल बिखरते हैं तो ये आवाज़ हमें अपने साथ झूला झुलाती। न जाने कितनी उपमाओं से सजी थी मुकेश जी की आवाज़, जितना लिखूं कम है। आकाश में जितने तारे हैं, नदी में जितना पानी है, वैसे ही गायकी की दुनिया में मुकेश की उपस्थिति दर्ज है। सदियां बीत जाएंगी मगर मुकेश जी की आवाज़ का जादू कम न होगा। चलिए अनीता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

मनोज कुमार और साधना पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात है कि आज की इबारत मानव जीवन के सबसे गहरे दर्शन, संघर्ष और संगीत के रूहानी असर का एक अत्यंत भावुक और जीवंत चित्रण है। ये सच है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हर ठोकर के बाद संभलना ही जीवन है। जब इंसान तन्हाई, छल और वक्त की बेवफाई से टूट जाता है, तब शब्द और तर्क काम करना बंद कर देते हैं। उस वक्त केवल संगीत और एक रूहानी आवाज़ ही दिल को तसल्ली दे पाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बंदिनी फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, नूतन पर फिल्माया गया। संगीत किसका है आपको बताना है।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही

0: शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले सदन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदंबा नौसेना बेस पर माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
3: In this era of volatility and disruption,
4: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय

0: ये कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
1: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
2: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। पहला जो गीत है ये उसने कहा था, इस फिल्म का गाना है। मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

हिम्मत वाले जमाने से निराले दिलों के शहजादे ये दिल वाले न बंध के रहेंगे न थप के रहेंगे जहाँ भी रहेंगे वो ये मत वाले हिम्मत वाले जमाने से निराले दिलों के शहजादे।

तू नहीं और सही इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में, गीतकार असद भोपाली, संगीतकार रवि।

0: ये प्यार से।
1: परख फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे।

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनिए
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब आपको सुनवाते हैं मियां बीबी राजी, इस फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

तीर और तलवार, इस फिल्म का ये गाना आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले की आवाज़, फारूक कैसर के बोल, संगीत निसार का।

अगला गीत सुनते हैं रंगीला राजा फिल्म का गाना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल, संगीत शिवराम का।

रंगीला राजा फिल्म का ये गाना आपने सुना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ों में, असद भोपाली के बोल और संगीत शिवराम का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला जो गीत है, जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

0: व्यंजन बनाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने लिए सलाद काटा?
1: अपने अकेले के लिए कभी खाना बनाया?
0: नहीं, अमूमन नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये पहले तो यहां से शुरू हो जाए कि आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना है। आपने जिम की बात कही है, तो ममता जी मैं इसको यहाँ से शुरू करती हूँ कि लगभग 13-14 साल पूर्व मुझे अस्थमा था, और पुराने लोग यह कहते पाए जाते हैं कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। अस्थमा यानी दमा, सांस की बीमारी, तो कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मैंने भी सुना ये कि, तो मुझे एक मन में चीज लगी कि अरे ये मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी है
1: जी।
0: और मुझे इससे अब बचना है। यहाँ तक कि मैं स्टेराइड्स पर थी,
1: जी।
0: तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं चूंकि खिलाड़ी रही हूँ, एनसीसी की कैडेट रही हूँ
1: बैडमिंटन खिलाड़ी।
0: और बैडमिंटन खिलाड़ी रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने फिजिकल जो फिटनेस है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है।
1: जी।
0: तो उस वक्त जब मैंने जिम ज्वाइन किया, और धीरे धीरे, देखिए अभी क्या होता है, मैं कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे डेडलिफ्ट है 40 किलो का, या बेंच प्रेस है 25 किलो का डंबल का, तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा है ये तो। लेकिन कैसे होता है कि आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं। आप एकदम से आप 50 किलो का या 40 किलो का या 25 किलो का डंबल नहीं उठा सकते हो। तो जब मैंने इसकी शुरुआत की, तब मैंने 2.5 किलो के डंबल से शुरू किया, 5 किलो से शुरू किया। तो जब जब मैंने जिम जाना शुरू किया, जब मुझे लगा कि नहीं, सेहत के प्रति हमको जागरूकता चाहिए, तो मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती जा रही हूँ। तो जब आप भीतर से भी स्ट्रांग होते हैं, तो आपको बीमारियाँ फिर थोड़ी सी आपसे दूर भागती हैं, बीमारियाँ आपसे डरने लगती हैं। ये मैंने जिम शुरू किया, और जब सिक्किम में हम गए पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ से आकर के मैंने जितनी स्टेरॉइड्स थी वो पैक की हुई थी, और वो मैंने घर आके डस्टबिन में डाल दी। मुझे उसके बाद स्टेरॉइड्स नहीं लेना पड़ी। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो बीमारियों पर आप इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: और तब मैंने एक कहानी लिखी, फतेह, इसी
1: जी
0: थीम को
1: जी
0: लेकर के तब मैंने कहानी लिखी। दूसरी चीज ये हो गई है कि डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जल्दी छोटी उम्र से शुरू कर दें, ना महिलाएं अगर 30 बरस से भी शुरू कर दें तो भी बहुत अच्छा है, और बड़ी उम्र से शुरू करें तो भी, बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं बीता है, जब जागे तभी सवेरा। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए।
1: जी
0: प्रोटीन यानी, और मैं ये नहीं कहती कि प्रोटीन पाउडर लीजिए, मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन पनीर है, स्प्राउट्स है, मूंग मोठ, चना चवला, तो महिलाएं अपने किचन में रोज गलाएं खाएं, और छाछ लें, सत्तू लें, सत्तू तो आदिकाल से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, हाई प्रोटीन है उसमें। तो अपनी डाइट का अपने को ध्यान रखना चाहिए।
1: जी
0: मैं ये भी नहीं कहती कि आप कचौरी समोसे ना खाओ, सैंडविच ना खाओ, खाएं कभी कभी, लेकिन आपके पेट में क्या जा रहा है उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: तो ये तो डाइट की बात हो गई। और हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत बड़ा डंबल उठा के और झुकी हुई हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, और एक में देखा कि आप टायर उठा उठा के फेंक रही हैं। तो ये कितने समय बाद ये शक्ति आपके भीतर पैदा हुई?
0: मेरे ख्याल से डेडलिफ्ट तो मैंने थोड़े टाइम बाद शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो 20 केजी का बार होता है, 20 किलो का बार। तो पहले खाली बार से शुरू किया, फिर उसमें 5-5 किलो के चक्के डाले, पहिए जैसे होते हैं वो डाले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो वही कि आप एक झटके से नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिम जाते हैं, तो वहाँ हर जिम में, या तो आप कुछ ऐसा स्तरीय जिम ढूंढें, जिम में ट्रेनर जो होते हैं वहाँ, जो भी हैं जो आपको अटेंड करते हैं, वो

0: पहले पूछते हैं, आपकी कोई सर्जरी हुई है, आप उसको सब सच सच बताइए,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना। फिर वो पूछते हैं आपकी कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, वो आप बताइए। आपको बैक पेन तो नहीं है, वो बताइए। नी पेन तो नहीं है, वो बताइए। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे एक घुटने में मेरे बहुत सालों पहले पस हो गया था, और उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई और करीब 2.5 महीने तक वो प्लास्टर रहा। तब मैं घुटना नहीं मोड़ पाती थी, मुझे नीचे बैठना मना था क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी। लेकिन फिर जब जिम शुरू किया तो स्क्वाट्स लगाए तो मैं नहीं लगा पाती थी, लेकिन ट्रेनर के देखरेख में धीरे धीरे स्क्वाट्स लगाना शुरू किया और आज मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो कोई भी चीज़ को आप निरंतर अभ्यास से करेंगे और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप जिस जगह में हूँ आप भी उस जगह पर आ सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लेखक को तो हाथ की तकलीफ अमूमन हो जाती है
0: होती है
1: क्योंकि वो नियमित रूप से
0: गर्दन की
1: अपना,
0: होती है,
1: हाँ,
0: गर्दन की
1: गर्दन की,
0: होती है।
1: हाथ की।
0: तो मैं भी जब लिखती हूँ, मैं अभी भी कागज़ कलम पे लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं अभी कंप्यूटर युग में है पर मैं कंप्यूटर वाली अभी भी नहीं हूँ, मुझे लिखने के लिए कागज़ और कलम ही चाहिए। तो मैं लिखती हूँ, कई बार लंबा भी लिखना पड़ता है, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा गर्दन को चारों तरफ घुमा लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। जब आप अभ्यास में, आप शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और अब चलते चलते हम हमारी तमाम सखियों को बताइए कि आपने तो अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारे समझौते किए, समझौता कहें या अपनी चॉइस पर, अपनी शर्त पर आपने छोड़ी। कैजुअल अनाउंसर रही, फिर आकाशवाणी में अनाउंसर बनी, वो आपने छोड़ा परिवार के लिए, अपने प्रेम के तहत, और पायलट बनते बनते रह गई, रिटर्न में आप क्वालिफाई की। लेकिन सखियों से आप क्या कहेंगी कि आज के जमाने में उन्हें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, जमाना बदला है ना। इस बदलाव को सभी लोगों ने स्वीकार किया है।
1: जी
0: एक जमाना था जब मैंने ये चीज़ें छोड़ी, लेकिन आज मैं मीडिया के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ। और जमाना बदला है तो, और अब चीज़ें भी बदली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल लड़कियों को ये सब कुछ छोड़ के और करना पड़ता है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो दोहरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, और मुझे लगता है कि अपने सपनों को जीवित रखें, उनको जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी के प्रति जो अपना नज़रिया है वो सकारात्मक रखें, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: मैं यहाँ एक चीज़ और कहूँगी कि
1: हाँ।
0: हक तो है ही। देखिए, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो वहाँ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार को प्राप्त करें,
1: जी
0: इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
1: जी और इस समय बहुत बेहतर होगा कि एक गाना हम सुनवा दें अपनी सखियों को। कौन सा गाना?
0: मैं ना खूब मस्तीखोर हूँ, मैं खुल के जीती हूँ, खुल के नाचती हूँ जब मौका मिलता
1: जी
0: है।
1: जी
0: मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है, मैंने विधिवत नहीं सीखा है, पर जहाँ म्यूजिक होता है मेरे पैर अपने आप उठ जाते हैं।
1: थिरकने लगते
0: तो
1: हैं।
0: मुझे ना एक कॉलेज में मुझे एक टाइटल मिला था मेरे आचरण को देखते हुए, तो हम वही गाना सुनते हैं, और वो टाइटल था जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने
1: किसने
0: जाना,
1: जाना, सुनते
0: तो
1: हैं।
0: बस यही गाना सुनते हैं।

0: ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: आपका। विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी वाली
1: जी
0: बातें की और इतनी इतनी प्रेरक बातें आपने साझा
1: जी
0: की।
1: जी बहुत
0: शुक्रिया
1: धन्यवाद ममता जी। आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: तो आरती, देखो हमारी जो सखी ज्योति जैन है उनकी ममता सिंह से जो बातचीत हुई वो हमने सुनी और उन्होंने भी फिटनेस के बारे में काफ़ी कुछ बातें हमें बताई।
1: जी
2: और देखिए, हंसना, खिलखिलाना, नृत्य करना, गीत सुनना, ये भी फिटनेस के
1: बिल्कुल, ये
2: कुछ
1: भी
2: राज।
1: फिटनेस में ही आता है।
2: तो ये उन्होंने हमें
1: जी
2: बताया। चलिए अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो उसे वो सबसे आखिर में रख देती हैं। जबकि सच ये होता है कि यदि महिला स्वस्थ और फिट होगी तभी परिवार की भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा
1: बिल्कुल।
2: ना।
1: और फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले दिखें। पतले दिखना ही फिटनेस नहीं होता है। फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। और महिलाओं के लिए रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो बहुत लाभदायक होती है
2: हाँ,
1: उसमें।
2: और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती कि हम घर का काम करते हैं ना तो उससे तो हमारे शरीर की हलचल हो जाती है, तो अब हमें और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसके जो पोस्चर होते हैं
1: बिल्कुल।
2: वो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए वो काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो काम अपनी जगह बहुत अच्छी बात है कि
1: जी
2: करना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़े आसन करें, तो
1: बिल्कुल,
2: वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं
1: क्योंकि
2: इस।
1: इतने काम के बीच में अगर हम अपने लिए 30 मिनट ना निकालें ये तो अपने खुद के साथ नाइंसाफी हो
2: हाँ,
1: जाएगी।
2: लेकिन कई महिलाएं नहीं निकाल पाती,
1: जी
2: घर की व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती
1: जी
2: है, बड़ा परिवार होता है, दिन भर काम करते हैं, और उसके बाद में अगर वो अपने लिए समय निकालती है तो कई बार घर के लोग कहने भी लग जाते हैं कि अरे इतना काम पड़ा है कि तुम ये क्या करने लगी हो। तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। खैर, लेकिन तेज कदमों से चलना, योग, प्राणायाम, साइकिल चलाना, नृत्य या हल्की एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी गतिविधि नियमित रूप से अगर अपनाई जाए तो काफी अच्छा होता है, और संतुलित आहार भी फिटनेस की मजबूत नींव होता है।
1: बिल्कुल। और आप खाने में हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दालें हैं, दूध है, मोटे अनाज हैं, पर्याप्त पानी और प्रोटीन की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो नहीं खाते उस तरीके के तो वो अंडे नहीं खाते हैं, तो वो पनीर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पनीर ले सकते हैं, दूध की बनी चीज़ें ले सकते हैं। और ये जो जंक फूड होते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा मीठे चीज़ें होती हैं, उनको अपना लें तो ज़्यादा बेहतर है।
2: हाँ, डिब्बाबंद जो भोजन आजकल बहुत प्रचलन में है,
1: जी
2: तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और हमारा तो सुझाव यही है कि उसकी बजाय आप घर में कोई भी चीज़
1: बिल्कुल,
2: बनाकर
1: क्योंकि हम
2: खाएं तो।
1: छोटी सी भी चीज़ जो जंक फूड वाला लेते हैं ना, उसके ऊपर आप देखिए कितनी कैलोरी लिखी होती है ना, तो
2: बिल्कुल।
1: उसमें हमें जितना चाहिए उसे कहीं कई गुना ज़्यादा हम थोड़े से खाने में ही ले लेते हैं, तो उसको आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है।
2: इसके अलावा मानसिक फिटनेस भी उतनी ही आवश्यक होती है। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना, ये बहुत मददगार साबित होते हैं इसमें।
1: बिल्कुल। और जीवन के अलग अलग चरण हैं, जैसे किशोरावस्था हो या जो गर्भावस्था है, प्रसव के बाद का समय है या रोजनवृत्ति का समय है, ये महिलाओं की शारीरिक इसमें ज़रूरतें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराना और विशेषज्ञ की सलाह

0: लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, ये जो रजोनिवृत्ति की तुमने बात की, तो उस समय भी महिलाओं को बहुत समस्याओं का
0: बिल्कुल
1: सामना करना पड़ता है उनको, जैसे हॉट फ्लशेस आना और बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन्हें। तो घर के लोगों का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो भी अगर ऐसी समस्या उनके साथ है तो थोड़ा उनका साथ दें और उनका ख्याल रखें। तो इस तरह से अब इन बातों का ख्याल रख के फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है। इसके
0: बिल्कुल
1: अलावा फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर महिला स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी और सशक्त समाज की वो पहचान भी होती है।
0: बिल्कुल
1: इसके लिए महिलाओं की फिटनेस पर बहुत अधिक ध्यान देना
0: बिल्कुल। अगर आप
1: जरूरी
0: जिम
1: है।
0: नहीं जा पा रही हैं, डंबल्स नहीं है आपके पास, तो आप एक एक लीटर की जो बॉटल्स होती हैं है ना, उसके जरिए भी आप कर सकती हैं, डंबल्स का काम उससे ले सकती हैं। तो आप
1: बिल्कुल।
0: घर में ही कुछ एक्सरसाइज हैं वो करेंगी ना, तो आपको फायदा दिखने लगेगा।
1: फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और वो जो गीत हमने सुना शगुन फिल्म का, उसके पहले हम फिटनेस की बातें कर रहे थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस बारे में अपने जो दिल के जो बातें थी या जो वो बताना चाहते थे हमें लिख भेजी है, तो हम एक एक करके हम अपनी सखियों को बताते हैं। एक साथी हमारी लिख रही है कि फिटनेस उम्र की मोहताज नहीं होती, चाहे किशोरी हो, गृहिणी, कामकाजी महिला या वरिष्ठ महिला, सभी के लिए सक्रिय और स्वस्थ रहना समान रूप से महत्वपूर्ण है। सैर, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद महिलाओं को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अनेक बीमारियों से भी बचाव होता है।
1: बिल्कुल। एक और हमारी सखी हैं जो लिखते हैं कि 50 के बाद प्रोटीन के रूप में सोयाबीन, टोफू, मिल्क और स्प्राउट, खासकर मूंग, मूंगफली, काले चने हर महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: और एक हमारी जो साथी हैं वो ये भी लिख रही हैं कि व्यायाम से एंडोर्फिन यानी कि जो हैप्पी हार्मोन से वो निकलते हैं जो तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स को कम करते हैं। हड्डियों की मजबूती उम्र के बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमज़ोर होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियाँ मजबूत होती है, ऊर्जा और आत्मविश्वास फिट रहने से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, जिससे महिलाएं अपने दैनिक कार्य अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कर पाती हैं।
1: जी। और एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि मैं सुबह सैर को जाती हूँ, थोड़ा बहुत योग व्यायाम करती हूँ, बाहर का खाना उसका जो होता है उसको खाने से परहेज करती हूँ कभी कभार को छोड़कर, और मौसमी फल सब्जी खाती हूँ। संगीत बहुत तरोताजा रखता है इसलिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनना नहीं छोड़ती हूँ। मनोरंजन के लिए सखी सहेलियों के साथ गेट टुगेदर भी करती हूँ।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है।
1: जी
0: और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि योग और प्राणायाम मानसिक शांति और लचीलेपन के लिए, योग सबसे उत्तम है, पिलेट्स, कोर स्ट्रेंथ और बॉडी पोस्चर सुधारने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग हृदय स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी कि रोजाना 30 मिनट तेज चलना फायदेमंद होता है। और
1: बिल्कुल
0: इस तरह की फिटनेस से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे सखियों ने हमें लिख करके भेजी, तो हम उन सभी को धन्यवाद कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मणिपुरी साड़ी के बारे में।
1: जी।
0: तो मणिपुरी जो साड़ी है ये साड़ी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से यानी कि राजा रानियों के समय से काफ़ी लोकप्रिय है। पुराने समय में इस साड़ी को रानियां भी पहना करती थी। मणिपुर की साड़ी को कारीगर मशीन का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि हाथ की बुनाई से बनाते हैं।
1: जी यही इसकी खासियत भी है। इसे बनाने में कुल 15 से 20 दिनों का समय लगता था और मणिपुर की साड़ियों को आज भी महिलाएं खास मौकों पर पहनती हैं। इन साड़ियों को पहनकर वो अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मणिपुरी साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। ये राजघरानाओं की जो राजघराने होते थे उनकी परंपरा और महिलाओं के सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, वैसे भी जब कोई भी महिला जब साड़ी पहनती है तो एक एलिगेंट लुक मतलब
1: बिल्कुल
0: यूं कह सकते हैं कि बहुत उस सुंदरता उसमें नज़र आती है। और जब हमारे देश में विभिन्न तरह की साड़ियाँ बनती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की साड़ियाँ बनती है, और जब कोई त्यौहार आता है तो उस प्रांत की वो खास जो साड़ी है वो पहनी जाती है, तो सब महिलाएं एक तरह की साड़ी पहनती है, उस खूबसूरती का तो कहना ही क्या
1: बिल्कुल
0: है ना। और मणिपुरी साड़ी और कपड़ों में दिखने वाले प्रसिद्ध टेम्पल डिज़ाइन और मोइरांग फी कहा जाता है जो डिज़ाइन होते हैं उनका
1: जी
0: नाम है ये। और इस डिज़ाइन का आविष्कार मोइरांग साम्राज्य की जो राजकुमारी थी थोड़बी, उन्होंने किया था। और मणिपुरी साड़ियों को प्रिंट या डाई करने के लिए पहले के समय में पेड़ों की छालों, पत्तियों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था।
1: बिल्कुल। पहले तो इसे प्राकृतिक तरीके से ही बनाते थे, कुछ भी अलग से रंग नहीं इस्तेमाल करते थे। इन सभी चीजों से कपड़ों पर कलर किया जाता था। यही कारण है कि ये साड़ियां सालों साल अपनी चमक नहीं खोती हैं। मणिपुरी साड़ी जो होती है वो सिर्फ रानियों तक सीमित नहीं थी बल्कि आज भी ये अपने हल्के और आरामदायक फैब्रिक, टेम्पल बॉर्डर और खूबसूरती के लिए महिलाओं के बीच काफी चलन में है।
0: बिल्कुल। और ये साड़ियाँ मलबरी सिल्क, एरी सिल्क और कॉटन सिल्क ब्लेंड से तैयार की जाती है। ये सिल्क हल्का और सॉफ्ट होने के कारण बेहद आरामदायक होता है। इन साड़ियों पर बनी टेम्पल बॉर्डर साड़ी के लुक को और खास बना देती है। मणिपुरी संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व है और प्रत्येक रंग का अपना प्रतीक और अर्थ होता है।
1: जी, जैसे कि लाल रंग प्रेम और जुनून का प्रतीक होता है जबकि हरा रंग उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। पीला रंग खुशी और शुभता से जुड़ता है जबकि सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये साड़ियाँ हथकरघे पर बुनी जाती हैं, मुख्य रूप से इनमें सूती और रेशमी धागों का प्रयोग होता है।
0: हाँ, और ये जो रंग बिरंगी साड़ियाँ होती है ना, वाकई में ये अलग अलग जो रंग होते हैं, चटकदार जो रंग होते हैं, वो
1: जी
0: देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कई महिलाएं तो हर तरह के रंगों
1: जब वो
0: का
1: त्योहार
0: संग्रह
1: जब वो पहन के आती है ना तो पता चलता है जहाँ त्योहार है।

0: बिल्कुल। और कुछ साड़ियां तो ऐसी होती है जिसमें मिले जुले रंग होते हैं, बहुत
1: जी
0: सारे रंगों की एक ही साड़ी बनी होती है,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: वो भी बड़े एक इंद्रधनुष के रंगों की तरह बड़ी खूबसूरत लगती है। आजकल कुछ आधुनिक डिजाइनों में मिश्रित धागों का भी प्रयोग किया जाता है। महीन बुनाई और सादगी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके मुख्य प्रकार हैं फानेक, मयेक, नाइबी, क्षैतिज, धारियां वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फानेक है, कनाप फानेक।

0: महीन और पारदर्शी मलमल यानी कि मसलिन जैसी जो होती है साड़ी वो होती है, और शुरुआत में इसे शाही परिवार के लिए वांगखे क्षेत्र में बुना जाता था।
1: हाँ,
0: और
1: और
0: जी
1: सामी लामी भी ये बुनाई और कढ़ाई का एक अद्भुत संयोजन है जिसमें जानवरों पारंपरिक प्रतीकों को उकेरा जाता है।
0: जी और कभी से मणिपुर में प्रतिष्ठा योद्धाओं का प्रतीक माना जाता था। पारंपरिक रूप से इन साड़ियों को सूती, कॉटन और रेशम जो होती है, एरी और मलबरी धागों से हाथों द्वारा बुना जाता है। इन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पेड़ों की छालों का उपयोग किया जाता था।
1: हाँ, तो इस बार अगर जब भी आप मणिपुर जाएं तो, या फिर आपके कोई दोस्त कोई रिश्तेदार अगर जाते हो, तो वहाँ से एक साड़ी ज़रूर मंगवाइएगा,
0: बिल्कुल
1: उनसे कहिएगा कि हमारे लिए एक मणिपुरी साड़ी लेकर आई है। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं
0: हाँ
1: और उसके
0: बिल्कुल
1: बाद आगे बढ़ेंगे।

0: आवश्यकताओं की जानकारी ही नहीं है और एक पर एक फ्री का लोभ भी समाया हुआ है। फिर मानव की प्रवृत्ति भी संग्रह करने की है, इस दृष्टिकोण से फिजूल खर्ची होना स्वाभाविक ही है। अक्सर ऐसा होता है ना मंजू जी, जब हम कुछ लेने जाते हैं, जो हम लेने जाते हैं अगर उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, कम दाम का मिल रहा होता है या एक पर एक फ्री होता है, तो हम उसको जरूर उठा लेते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो चाहे ना हो।
1: हाँ बिल्कुल, ये समझ करके कि ये तो फ्री मिल रहा है हमें,
0: हाँ
1: लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका कुछ तो हमें भुगतान करना ही होता है, जो कि हमें पता नहीं चलता है।
0: जी
1: हमारी एक साथी ये लिख रहे कि ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना, बजट न बनाने और बचत के महत्व को न समझने की आदत, गलत वित्तीय आदतें जैसे फिजूल खर्ची, बिना बजट के खर्च करना और बचत न करना, जो कंगाली की शुरुआत कर सकती है। आय
0: जी
1: से अधिक खर्च करने पर व्यक्ति कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। मानसिक तनाव, वित्तीय असुरक्षा के कारण परिवार में कलह और मानसिक अशांति बढ़ती है।
0: जी और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आज की दिखावे की दुनिया में लोग अक्सर आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। हमें अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। सादगी पूर्ण जीवन और मितव्यता हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची छोड़कर बचत और समझदारी की आदत अपनाना ही जीवन की सच्ची समृद्धि है।
1: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि फिजूल खर्ची को रोकने का अर्थ कंजूसी करना नहीं बल्कि मितव्ययता, यानी कि सोच समझकर खर्च करना है, इस आदत को अपनाना है। इसके लिए व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि ये उसकी आवश्यकता है या केवल एक इच्छा। बजट बनाकर जीने और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।
0: बिल्कुल
1: और एक साथी ने ये भी लिखा है कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। तो इन सब आदतों से, इन बातों से हमें बचना है और फिलहाल एक गीत
0: गीत
1: सुनना
0: सुनना
1: है।
0: है।

0: हमारा ये जो सेगमेंट है ना कि
1: हाँ
0: शब्द हमारा और विचार आपके, तो इसमें आज का जो शब्द है वो फिजूल खर्ची है, तो इस बारे में हमारे साथियों के, हमारे सखियों के क्या विचार हैं वो जान लेते हैं। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि फिजूल खर्ची मतलब समय या संसाधनों का बिना ठोस आवश्यकता खर्च में लापरवाही बरतना। ये एक ऐसी आदत है कि व्यक्ति अपनी आय के मुकाबले ज़्यादा खर्च करके सिर्फ दिखावे के लिए पैसे लुटाता रहता है, अंत में कर्ज में डूब जाता है और तब उनकी आंखें खुल होती है तब बड़ी देर हो चुकी होती है। खर्च करने के बारे में एक गुजराती मुहावरा है कि पछेड़ी प्रमाणे सोड़ ताड़वी। इसका मतलब यह होता है कि चादर के हिसाब से पैर फैलाना। खर्च
1: बिल्कुल
0: के साथ बचत की आदत भी डालें, वो आपके बुढ़ापे में एक लाठी जैसा सहारा बन सकती है।
1: जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची, भाई इस रोग से प्राय सभी ग्रसित होते हैं, और ऐसा इसलिए है कि अपने

0: गीत एक चटपटा सा गाना हमने सुना और अब ज्वार की कुछ चटपटी रेसिपीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि हमारे प्रांत में ज्वार नहीं होता है,
1: अच्छा।
0: महाराष्ट्र जाने पर वहाँ ये रोटी खाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है और वहीं के लोगों से बनाना भी हमने सीखी है। और अब तो वैसे पैकेट में सारी चीज़ें मिल रही है, आटा भी मिल जाता है। ज्वार की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब मैं थोड़ी ढंग से उसे बना भी लेती हूँ,
1: अरे
0: क्योंकि
1: वाह।
0: उसे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो टूट जाती है
1: टूटती
0: किनारों
1: है
0: से,
1: जी।
0: इसलिए तो उसको बनाना भी एक टेक्निक होती है और हर किसी के हाथों में ये हुनर नहीं होता है, तो हमें भी सीखना चाहिए। लिखती है ये कि मैं रात के खाने में ज़्यादा ज्वार की रोटी खाती हूँ, किसी भी तरह की तीखी चटनी और सब्जी के साथ खाई जाती है, पर मुझे ये ठेचा और गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठेचा एक तरह का महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक तरह की चटनी होती है, मसाला भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लहसुन होती है, थोड़ा अदरक हरी मिर्ची होती है और फिर उन सबको थोड़ा भून लिया जाता है, थोड़ा मूंगफली के दाने डाल करके, और फिर उसे पीस लिया जाता है नमक डाल करके,
1: अरे
0: और थोड़ा
1: वाह,
0: दरदरा सा इसे रखा जाता है, उसे ठेचा कहते हैं
1: बिल्कुल
0: महाराष्ट्र
1: एकदम मुंह में पानी आ जाए ऐसे रेसिपी बता दी आपने
0: बिल्कुल पारंपरिक जो
1: जी।
0: रेसिपी होती है, व्यंजन जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, हाथ से कूटना पीसना और इस तरह के कुछ अच्छी तरह से उन्हें सेकना, चूल्हे के ऊपर पहले तो सेका जाता था, तो ये जो प्रोसेस होते थे इसमें उन चीज़ों का एक स्वाद जो है
1: बिल्कुल
0: वो
1: बढ़
0: निखर कर
1: जाता
0: आता
1: था।
0: था।
1: खाली मिक्सी में आप पीस दें तो वो स्वाद नहीं आता जो हाथ से पीस के आता है।
0: बिल्कुल, अब और भी
1: हाँ
0: व्यंजन
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है इन्होंने लिखकर भेजा है, ज्वार आटे की राब।
0: अच्छा।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच ज्वार का आटा, 4 चम्मच घी, आधा चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच काजू बादाम की कतरन, 4 चम्मच गुड़, आधा चम्मच ड्राई जो अदरक का पाउडर होता है वो, और 2 कप गर्म पानी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स की कतरन। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें अजवाइन डालकर 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए अच्छे से, और बाद में ज्वार का आटा डालकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बाद में अदरक का पाउडर, गुड़ और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लीजिए। बाद में काजू बादाम की कतरने डालकर वापस से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अभी हमारी जो टेस्टी गर्मा गर्म जो ज्वार आटे की राब है वो बनकर तैयार है, इसको ड्राई फ्रूट से सजा
0: बिल्कुल।
1: सकते हैं।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है, जो फाइबर, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है। इसके सेवन से वजन नियंत्रण और पाचन क्रिया बेहतर बन रहती है। ज्वार के आटे और साबुत ज्वार से कई स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। अब पहले ज्वार की रोटी या भाकरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ ले और हाथ या बेलन की मदद से गोल बेलकर धीमी आंच पर इसे सेके, तो इस तरह से तो ये रोटी बन जाएगी। हालांकि इन्होंने जितनी आसानी से लिखा है उतनी आसानी से वो बनती नहीं है।
1: बनती नहीं।
0: ज्वार का चीला किस तरह, पुड़ला जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बनाएं कि ज्वार के आटे में दही, पानी, कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर और इसके अलावा नमक और हरी मिर्च मिलाकर एक घोल बना लें, इसका वो
1: अच्छा।
0: तैयार कर लें और तवे पर तेल लगाकर वो घोल जो है वो फैलाते हैं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेके, अचार या दही के साथ इसको खा सकते हैं, चाय या कॉफी के साथ भी खाया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा आसानी से बनाया
1: बन
0: जा
1: सकता
0: सकता है।
1: है।
0: इसी के साथ इन्होंने ज्वार का उपमा किस तरह से बनाए वो भी लिखा है कि रात भर भीगी हुई साबुत ज्वार को कुकर में उबाल लें, पैन में राई, करी पत्ता, प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां भुने और इसमें उबली हुई ज्वार और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकाएं। इस तरह से ज्वार का उपमा तैयार होता है।
1: वाह बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। और साथ ही हम बात कर रहे थे ज्वार की जो खस्ता कचौड़ी होती है उसके लिए 1 कप गेहूं का आटा चाहिए, बेसन अभी उसमें आप ले सकते हैं, लेकिन ये तो इन्होंने गेहूं का बताया हुआ है, हमें तो चाहिए ज्वार का। तो हम बात करते हैं ज्वार भाकरी की। तो 2 कप ज्वार का आटा, 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा चाहिए, 2 टेबल स्पून तेल और 1 टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा कप बारीक कटा हुआ धनिया और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक और भाकरी सेकने के लिए घी। सभी सामग्री को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और पानी की सहायता से उसका सख्त आटा आप गूंद सकते हैं। तो मतलब

0: पतला नहीं रखना है, पतला तो वो अलग हो जाएगा, फिर वो वैसा नहीं बनेगा। तो आटे को बराबर नींबू के आकार की छोटी छोटी सी लोइयों में आप बांट लीजिए। लोई को बेलकर भाखरी बना लीजिए। तवे को गर्म करके और धीमी आंच पर भाखरी को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक लीजिए। फिर घी डालकर लकड़ी के प्रेस से, मतलब उस तरह से दबाते हुए अच्छे तरीके से उसको दोनों तरफ से धीमी आंच पर तब तक सेकिए जब तक वो कुरकुरी ना हो जाए। फिर अपनी पसंद की सब्जी या चटनी के साथ आप खा सकते हैं।
1: बिल्कुल। एक साथी हमारी लिख रही है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके सेवन से ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। और ये लिखती है आगे कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ ज्वार की पारंपरिक रोटी, स्वादिष्ट ज्वार की राब, ज्वार का ढोकला या मुठिया और कुरकुरी ज्वार की पूरी आसानी से बना सकते हैं। और ज्वार के कुछ व्यंजनों के बारे में लिखा है इन्होंने, रोटी के बारे में लिखा है जो कि हम बता चुके हैं इसलिए, और चिले के बारे में भी लिखा है और उसके बारे में भी हम बता चुके हैं तो ये तो हम नहीं बता रहे। इसके आगे इन्होंने ज्वार की स्टफ्ड बाटी के बारे में लिखा है तो वो हम बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में अजवाइन, तिल और कसूरी मेथी मिलाकर आटा गूंथ ले, इसके अंदर आलू और मटर का मसालेदार मिश्रण भरे और बाटी की तरह इसको सेक ले या कम तेल में कचौड़ी की तरह तल ले और ये स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम है। इसके बाद इन्होंने ज्वार का उपमा बनाने के बारे में लिखा है, कि साबुत ज्वार को कुछ घंटे पानी में भिगोकर उबाल लें और अब राई, करी पत्ता और अपनी मनपसंद की सब्जियों से तड़का लगाए, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और राब के बारे में इन्होंने लिखा है जो भी, जिसकी रेसिपी भी हम बता चुके हैं।
0: बिल्कुल। एक छोटा सा ज्वार, ये ज्वार का डोसा है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ज्वार का आटा, 3 बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 मुट्ठी कटा हुआ ताजा धनिया, 3 कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच डोसा सेकने के लिए तेल चाहिए। अब एक बाउल में ज्वार, जो ज्वार होता है उसका आटा लीजिए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, नमक और पानी डाल लीजिए। सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाकर उसका पतला घोल तैयार करें। तवा गर्म करें और हल्का सा तेल लगा दीजिए उसको। फिर तवे पर घोल को डालकर गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं जैसे कि आप डोसा बनाते हैं और धीमी आंच पर डोसे को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लीजिए। फिर इसमें आप कुछ भर भी सकते हैं, आलू का मसाला, या आप ऐसे भी खा सकते हैं।
1: बिल्कुल। जो लोग रसोई घर में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि किस चीज से किस तरह की चीजें, और वो विभिन्न तरह के वो प्रयोग भी करते रहते हैं कि अरे इससे हो सकता है कि ये चीज अच्छी बन जाए, वो चीज अच्छी बन जाए, और इस तरह से बना के वो कुछ अलग अलग प्रयोग करके भी बना सकते हैं। हमारे एक साथी ने ज्वार के आटे का कप केक बनाने की रेसिपी भी हमें लिख के भेजी है, लेकिन अभी तो हम समय नहीं कि उसे पढ़ पाएंगे। तो अगर हमारे कोई साथी बनाना चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज से आप पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं।
0: बना के देखिए।
1: एक गीत हम यहाँ सुन लेते हैं।

0: आरती, देखो जब हमारी पसंद की कोई रेसिपी बनती है ना, जो हमें बड़ी पसंद हो, स्वादिष्ट हो, तो हम भी तो अपने मन में कुछ सपने सजा करके बैठ जाते हैं कि आज
1: कि हम
0: ये
1: इसको किसके साथ खाएंगे। हाँ
0: बिल्कुल इस तरह के सपने सजाए जाते हैं। खैर, हम अपनी सभी सखियों सखाओं के लिए यही दुआ मांगते हैं हमेशा कि आप बहुत अच्छे सपने सजाएं और आपके सपने पूरे भी हों।
1: बिल्कुल,
0: इसी के
1: स्वस्थ
0: साथ,
1: रहें।
0: हाँ, स्वस्थ रहें। इसी के साथ कार्यक्रम अब समाप्त करने की बारी है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी।
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मुकेश हम सबके दिलों की धड़कन हैं। हम खुश हों या उदास हों, जिंदगी का कोई भी पहलू चल रहा हो, मुकेश के गाने हमारी जिंदगी में एक साथ चलते हैं और न जाने कितनी पीढ़ियों ने मुकेश की आवाज के साथ अपनी जिंदगी का सफर तय किया है। आज हम मुकेश की याद को नमन करते हुए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस खास प्रोग्राम में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, तो उनका तारुफ कराने से पहले उनकी आवाज सुनिए।

0: है,
1: जिस देश में गंगा बहती है,
0: जिस
1: जिस देश
0: देश
1: में
0: में
1: गंगा
0: गंगा
1: बहती
0: बहती
1: है।
0: है।
1: क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में मुकेश की आवाज गूंजती है। तो स्वागत करते हैं जाने माने गायक मुख्तार शाह का।
2: नमस्कार यूनुस भाई, और सभी सुनने वालों को भी आदाब।
1: और मुख्तार भाई के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद मिश्र, जो मुकेश की आवाज हैं और बहुत प्यारे इंसान। बहुत स्वागत।
0: नमस्कार
1: थैंक यू
0: यूनुस भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
1: मुख्तार और गोविंद जी। आप दोनों सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मुकेश कहाँ से शुरू होते हैं?
2: जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था यूनुस भाई, तब वो हमेशा ऐसे गाने का शौक तो कुदरती तौर से था, तो गाना ऐसे गाया करते थे। टीचर कभी बोलते थे तो ऐसे कुछ भी रैंडम गाते थे, लेकिन वो मैं मुकेश जी के गाने समहाउ मुझे बहुत पसंद थे और वही मैं गाया करता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब वो कभी कभी फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुआ करते थे उन दिनों, मैं पल दो पल का शायर हूँ,
1: वाह वाह,
2: तो वो गाना मैं अक्सर गाया करता था जब भी ऐसा टाइम पास के तौर पे स्कूल के अंदर कोई वो पीरियड अगर फ्री है या कोई फंक्शन में गेस्ट नहीं आए हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए किसी को बुलाना है तो मुझे बुलाकर वो गाना गाने बोलते थे, तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे,
1: वाह
2: तो
1: वाह
2: इस
1: वाह
2: तरह से
1: वाह,
2: मेरा जहन भी मुकेश जी की आवाज़ की तरफ ज़्यादा,
1: ये किस शहर की बात है?
2: अहमदाबाद की जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी
1: जी
2: तो
1: बिल्कुल।
2: पैदाइश वहीं की है।
1: तो अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आपका जो
2: जी
1: झुकाव है वो मुकेश के गानों की तरफ हुआ।
2: जी
1: अब गोविंद की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ?
0: जी मैं तो हमेशा दूसरे सिंगर्स के ही गाने गाता था, लेकिन क्या है कि कुछ जो जानकार लोग थे संगीत के और जहाँ पे मैं सीखता था, बेसिकली इलाहाबाद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अब वो प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मुकेश को ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा ऐसा सिमिलर आता है। तो मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे सुनना शुरू किया, और मुझे याद है एक बार कंपटीशन में मुझे गाने का मौका मिला, तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात
1: हाँ,
0: नहीं, वो गाने का मौका मिला,
1: क्या बात है।
0: और वो गाने के साथ वो फर्स्ट प्राइज जब मुझे मिला तब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया
1: क्या बात है,
0: इसमें।
1: तो वही गाना सुनाइए फिर।

0: और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक और बात, गोविंद के इलाहाबाद शहर में पढ़ रहे थे और कंपटीशन वगैरह की तो बातें हुई, पढ़ क्या रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे?
2: बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ।
1: ओ हो, ये इंजीनियरिंग और गायकी
2: दोनों अलग अलग है। अभी म्यूजिक का शौक था और 4 साल क्लासिकल ट्रेनिंग मिली मैंने प्रयागराज संघ समिति से, और फैमिली में ऐसा कोई म्यूजिक में था नहीं, बट मेरा झुकाव थोड़ा उधर था तो
1: बगावत करनी पड़ी कि अब इंजीनियरिंग नहीं करेंगे।
2: कुछ सालों तक तो मुंबई में आने के बाद तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं शोज करता हूँ। मैंने हमेशा झूठी बोला कि मैं जॉब करता हूँ।
1: अच्छा, ये भी हुआ है?
2: हाँ, गांव में जनरली से मम्मी पापा को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा मंथली जो भेजना भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो, कितनी सैलरी है, कहाँ का जॉब है। तो बस वो चलता रहा। धीरे धीरे जब ये फेसबुक और इंस्टा में और सारे सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोज आने लगे तब थोड़ा हाईलाइट में हुआ, तब मैंने बताया कि भाई मैं शोज करता हूँ।
1: मतलब इंजीनियर नहीं है, सिंगर?
2: नहीं जी,
1: मुख्तार भाई आपने क्या पढ़ाई की है भाई?
3: मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया।
1: अरे बाप रे बाप, ये क्या मामला है?
3: मतलब मैं ऑफिशियली ऐसे, मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर। जब पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई के LLB करूंगा और वकील बनूंगा
1: जी।
3: तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। थोड़ा सा गाने का सफर शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में।
1: हाँ।
3: और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूजिक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम।
1: ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है
2: सच में।
1: कोर्टरूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं, तो जिरह की बजाय गाना ज्यादा अच्छा लगता है।
3: लेकिन शायद ऐसा था, डेस्टिनी बोलते ना
1: जी, जी।
3: तो मैंने शुरुआत की क्राइम साइड, मेरा लीगल प्रैक्टिस है। हाँ। आज भी मतलब मेरा एनरोलमेंट है
1: जी।
3: और तो लेकिन वो जहन से कलाकार था तो क्राइम की प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा मन बहुत सेट हुआ नहीं, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया। और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी।

0: तो ऑफ कोर्स म्यूजिक मेरा पैशन था, तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा।
1: क्या बात है। अच्छा, तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई बार गाने पड़ते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर गाने हैं।
0: जी जी
1: पर मैं यहां चाहता हूं कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आपको कम गाने का मौका मिले।
0: अमूमन शोज में नहीं रखे जाते ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद
1: क्या
0: में,
1: बात क्या
0: ये
1: बात, सरदार मलिक साहब का संगीत है
0: जी
1: ये।
0: जी तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है,
1: वाह वाह वाह।
0: तो ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अमूमन कम गाने का मौका आता
1: एक
0: है।
1: गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे नाम लेकर
0: वाह
1: पुकारो,
0: हाँ क्या बात है, वो भी डांसिंग का ही म्यूजिक है
1: ये
0: ना,
1: डांसिंग का म्यूजिक।
0: तो दो लाइनें हो।

0: अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप?
1: ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली के अपने जिंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया।
0: जी जी,
1: लेकिन यस, कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त हम स्पीचलेस हो जाते कि उनसे क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज़ और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
0: बिल्कुल। गोविंद आप बताइए।
2: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते तो, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि मार्क बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी,
0: बिल्कुल
2: एकदम एकदम सीधा सीधा गाना, और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना। वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उड़ता नहीं उनको।
0: क्या बात। अच्छा, मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी है, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?
1: जी।

0: क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है
1: हाँ
0: उससे
1: हाँ
0: बहुत लगाव था और
1: जी
0: उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है, मुख्तार भाई?
1: मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके जबान से ये सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए जाएं और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज़्यादा पसंद करूंगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है।

0: है।
1: बिल्कुल
0: और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है, और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है ज्यादातर वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं।
1: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार,
0: जी
1: इसलिए जो सैड सॉन्ग्स है उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से
0: यही
1: जोड़कर
0: यही
1: देखा जाता है। गोविंद आप ये
0: यही
1: मानते
0: इंटरव्यू बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का। तो यही
1: हैं?
0: था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिया जाए और एक सैड नंबर दिया जाए तो मैं सैड
1: हाँ
0: को ही प्रेफर करूंगा।
1: लेकिन
0: अच्छा
1: लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं, और मैं तो इनफैक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूँ कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे, तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश, क्या
0: तो
1: बात
0: मतलब
1: है,
0: 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए, तो लोगों को
1: वाह।
0: ऐसा होता है कि अच्छा इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी हैं।
1: हाँ ये बहुत जरूरी बात है, तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर गाइए।
0: अच्छा।

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाले याद आया था, तौबे मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा तो राज कपूर जी का गाना
0: क्या बात है।
1: है।

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज तो इस गाने को चुना जाए, किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज? ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वाह वाह,
0: मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने।
0: हाँ।
1: तो लेकिन मुझे पर्सनली मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी।
0: तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप?
1: जो

0: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत इंदीवर का
1: यस
0: लिखा हुआ ये
1: इंदौर
0: गाना
1: यार है
0: सफर फिल्म से, और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही
1: वही
0: बात
1: बात
0: करेंगे हम
1: बिल्कुल
0: अपने

0: लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं, और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया। तो गोविंद, अब वही सवाल आपके पास आ रहा है।
1: शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे फिल्माए गए उनके गाने,
0: वाह वाह
1: जैसे
0: वाह।
1: फिल्म कभी कभी का,
0: हाँ

0: ख्याल।
1: इतना अच्छा लग रहा है कि गानों की बारिश हो रही है और हम बहुत शिद्दत से मुकेश को याद कर रहे हैं। मुख्तार भाई, पूरी दुनिया में जाकर आप शोज करते हैं, मैं विदेशों में आपके शोज की बात करने जा रहा हूं, जहां कोई यादगार घटना बताइए।
2: यानी अमूमन तो जैसे हम अब्रॉड जो शोज करने जाते हैं तो ज़्यादातर तो हमारा क्राउड जो होता है अपना एशियन, उसमें भी अपना इंडियन क्राउड और अड़ोस पड़ोस के देशों के भी लोग जो होते हैं हमारा हिंदी सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग ही प्रोग्राम देखने आते हैं। और यादगार में अगर मैं कहूँ तो मुझे हॉलैंड, नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर्स में सबसे ज़्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज़्यादातर नेदरलैंड से लोग जो हैं सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ रफ़ी साहब से कुछ ज़्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते।
1: क्या बात है,
2: ये की देश, इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है।
1: वाह गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज्यादा आती हैं?
3: सैड नंबर की ज्यादा आती हैं।
1: और उसमें भी कोई खास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है?
3: जाऊं कहां बताए दिल।
1: अच्छा,
3: इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है।
1: हाँ, बहुत ही जज्बाती गाना है।
3: हाँ, सारंगा तेरी याद में, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये सब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है।
1: सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये गाना सुनते हैं।
3: सजन

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा,
1: है ना।
0: तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, वो गाने भी इक्वली इतने ही अच्छे और मुझे पसंद है।
0: अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे।

0: जब आप लोग गाते हैं तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे मुकेश जी हमारे सामने मौजूद हैं और गा रहे हैं। अपने गले का किस तरह से ख्याल रखते हैं आप लोग, बारी बारी से बताइए। पहले मुख्तार।
1: बिल्कुल, आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं कहता पहले इनसे पूछिए।
2: अब पर्टिकुलरली यूनुस भाई, थोड़ा सा गले का ख्याल रखने में एक तो बात यही होती है कि थोड़ा सा अपने वॉइस के लिए जो भी मैं तो बाकायदा म्यूजिक सीखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा उटपटांग आता है वैसे थोड़ा सा रियाज करना सुबह में, वो थोड़ा सा करते हैं। एक गले के लिए खास सबसे पहला वही ज़रूरी होता है, और दूसरा ये होता है कि शो से 3-4 घंटा पहले तक कोशिश करते हैं और ख्याल रखते हैं कि कुछ फ्राइड कुछ नहीं खा लें या खट्टा कुछ ऐसा नहीं खा लें, और ठंडे का परहेज तो हमेशा रहता है थोड़ा।
0: गोविंद, आप
1: आइसक्रीम वगैरह तब चलता है जब 3-4 दिन का गैप हो, तो ऐसा लगता है कि भाई अभी गैप है खा लो। हाँ। थोड़ा सा कर सकते, थोड़ा फ्राइड चीज कुछ हुआ। हाँ। क्योंकि समोसा वोसा मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा।
1: तो मैं देखता हूँ कि 3-4 दिन का गैप है तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता। और कोशिश करता हूँ कि नींद प्रॉपर लूँ जितना हो सके, 7-8 घंटे की नींद लेता हूँ। और सुबह उठना जैसा मुख्तार भाई ने बोला कि थोड़ा सरगम पे तो लगता ही हूँ, मतलब नोट्स पकड़ के एक एक नोट सा नींद आ पाए सरगम, वो एक एक एक नोट पे रहता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, इलाहाबादी व्यक्ति को दुनिया में बाकी जगहों के समोसे पसंद आते हैं?
1: नहीं आते, लेकिन अब वो टेस्ट ऐसा करता हूँ चला इलाहाबाद में ही खा रहा हूँ।
0: अच्छा। खान पान का बाकायदा परहेज होता है?
2: थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही रहता है।
0: अच्छा, ये बताइए कि मुकेश की बहुत सारी गजलें हैं और उनमें से कुछ गजलें आपके दिल के बहुत करीब हैं, ये मुझे पता है। तो किन गजलों का जिक्र?
2: खूबसूरत उन्होंने जो गैर फिल्मी ये गजल वगैरह उन्होंने गाई है
0: जी।
2: लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर मुझे जो बहुत पसंद है वो है तेरे

0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें बहुत कमाल की गजलें हैं, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, मेरे महबूब नहीं ये नहीं। मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे। लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मन्ना डे ने बहुत सारे किए, रफी साहब की भी गजलें मौजूद हैं। तो अच्छा, गोविंद मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो?
1: मैं सच बोलूं तो ऑन एयर आज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जब मेरा शो होता है, जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूँ।
0: अच्छा,
1: नहीं तो मेरे फेवरेट हमेशा रफी साहब रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: रफी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ।
0: तो फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि रफी साहब का एक गाना आप सुनें। ये तो अलग ही हो जाएगा मामला, है ना।

यार ये जो है ना ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, अब मुझे आइडिया आ गया। हाँ। अब मुख्तार भाई आपको भी रफी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये।

0: क्या बात है, पहली बार आपसे हमने रफी साहब को सुना,
1: मैंने भी,
0: अच्छा
1: मैंने भी
0: ये देखिए, ये ऐसा सिर्फ आरती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो
2: हो सकता है कभी ऐसा कुछ फरमाइश आ जाए।
0: अच्छा, जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हो, तो किन किन कलाकारों के गाने सुन रहे होते हैं?
2: मैं रफ़ी साहब सभी के फेवरेट रहे हैं, उनके गाने बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और ऑफ कोर्स मैं कभी किशोर कुमार जी के भी गाने कुछ मुझे पसंद हैं तो वो मैं सुनता हूँ अगर वक्त मिला तो।
0: गोविंद?
1: मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से।
0: वहां हमने गजलों की बातें की तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु
2: मैं सोच ही रहा था,
1: सोच के जो है
0: चुपके चुपके रात दिन
1: चुपके चुप

0: आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
1: एक पूरा दौर रहा है
0: ओ
1: गजलों
0: यस
1: का, जब
0: यस
1: गुलाम अली के कैसेट्स कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते
0: हाँ
1: होंगे।
0: एग्जैक्टली
1: आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने, कितने दबाव और तनाव की बात होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है।
0: तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहां लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनके उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे, मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता
1: क्या
0: कि
1: बात
0: भाई
1: है।
0: लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज़ ठीक से निकल जाए, आवाज़ चल जाए,
1: हाँ
0: क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है नहीं, हम किसी और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज़ को उसको कॉपी करना है, तो वो
1: हाँ
0: थोड़ा सा, क्योंकि अगर ऐसा सोचते हैं, अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते
1: आप 5-10% नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा करते हैं,
0: हैं।
1: मतलब 99% 100% करते हैं। गोविंद, कितना टेंशन होता है शो से पहले?
0: टेंशन तो बहुत रहता है, और जैसा मुख्तार भाई ने बोला, पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है,
1: हाँ
0: जिससे धक धक धक धक करता रहता है। और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ, मेरा जब नंबर आने लगा, जैसे पहला गाना मेरा ही है, तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है, और मैं
1: अच्छा।
0: कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ, भाई आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस और कुछ
1: अच्छा,
0: नहीं।
1: इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं? जैसे इन्होंने कहा, भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना
0: नहीं,
1: आज,
0: ये तो सबसे बड़ी बात ही है, टेंशन को ईज करने के लिए
1: ऊपर
0: आप
1: वाले को छोड़ दो।
0: ऊपर वाले को, हाँ उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई
1: हाँ
0: संभालना।
1: बिल्कुल। एक चीज, हाँ ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते,
0: जी
1: अमूमन आपको सब गाने याद हैं,
0: जी
1: ये कितनी चैलेंज

0: चेंजिंग बात होती है, ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया?
1: नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो हम लोगों को, पता है, हम फिल्में जब जैसे देखने जाते तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी,
0: बिल्कुल
1: और अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता था वैसा होता, तो वो गाने भी उसी वक्त से मुझे ये सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं, तो वो आज तक ऐसे एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूँ कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है वो।
0: चलता चला जाता है। तो
1: हाँ
0: कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए
1: जी,
0: मैंने कहा कि ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा कर
1: हाँ,
0: रखा
1: और
0: है।
1: वो मैंने क्या है कि कभी

0: खजाना दिमाग में जमा कर रखा है।
1: और वो मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं रेफरेंस के लिए, मैं कागज़ इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि जिस दिन साइकोलॉजी एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि अब भाई एक रेफरेंस के लिए है तो वो नजर वहां जाएगी। वो कहते हैं ना कि अब जैसे बैंडेज खरीदते हो तो आपको चोट लगती है।
0: अरे
1: तो खरीदना ही नहीं चाहिए बैंडेज।
0: गोविंद कितने गाने याद रहते हैं और डायरी की जरूरत पड़ती है?
2: हाँ कभी कभी पड़ती है, जैसे मुख्तार भाई ने बोला अभी कि थोड़ा रेफरेंस के लिए ना वो दिमाग में मेरे बैठ गया है वो चीज, कुछ लाइनों को देखना पड़ता है। मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है, होता है। लेकिन कुछ गाने बहुत याद है, कुछ गाने एकदम पूरे याद है, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब अमूमन कभी नहीं गाया है या पहली दो बार गा रहा हूँ, दो तीन बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है।
0: अच्छा, फिर इतने सालों से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
1: मैं अब इन दिनों अभी काफ़ी सारे मतलब रिहर्सल मैं स्किप करने लगा हूँ, बहुत नहीं जाता हूँ रिहर्सल में। लेकिन ये हाँ कभी जैसे प्यारे भाई का अगर कोई प्रोग्राम है या आनंद जी भाई के साथ कर रहे हैं, विजू भाई के साथ कर रहे हैं, तो वो रिहर्सल पर्टिकुलरली अटेंड करने जाता हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा लर्निंग लेसन्स रहते हैं वहाँ पे। और बाकी अब म्यूजिशियंस और वो सब सारे इतने नोन हैं इतने सालों से, तो अब वो एक सबको एक लिस्ट दे दो और थोड़ा सा स्केल फोन पे डिस्कस कर लो तो काम वैसे चल जाता है।
0: बिल्कुल,
1: अनलेस के कोई ऐसा रेयर गाना गा रहे हो तो थोड़ा सा फिगर देखना पड़ा।
0: गोविंद आप बताइए।
2: नहीं रिहर्सल तो ठीक है, जो अगर हम रेगुलर गाने गा रहे हैं तो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है क्योंकि सारे म्यूजिशियन भी वैसे ही हैं, और आज के टाइम पे चाहे सिंगर हो म्यूजिशियन हो सब इतना मेहनती है, सब मेहनत करते हैं, सब अपना 100% स्टेज पर देते हैं, चाहे वो सिंगर हो चाहे म्यूजिशियन हो साउंड हो कोई भी हो। लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग गाने मिल गए, कुछ कोरस वाले गाने मिल गए तो रिहर्सल की जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल मुख्तार भाई, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए देखा है
1: जी,
0: तो जैसे प्यारे भाई ही हैं
1: जी, जी।
0: या आनंद जी भाई हैं या और तमाम लोग हैं, मतलब सिंगर्स भी बहुत सारे तमाम लोगों के साथ, उनकी कुछ यादें उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटिए।
1: मैं मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में जब छोटा था गाना मैंने शुरू किया अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देखकर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था तो सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे, और वो जब जुम्मा चुम्मा दे दे वाला म्यूज़िक आगे का चल रहा था तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली चार कीबोर्ड वाले थे उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और वही इंसान गलती कर रहा था वो जगह पर।
0: इतनी तो बारीकी से वो
1: बारीकी से जो सुनना
0: जी
1: ये,
0: और प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम गलत बजा रहे थे। तो ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स बहुत शोज किए हैं आपने, तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो?
1: मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग जहां आप नोट्स आपको करते हैं वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था, तो वो एक उन्होंने मुझे बताया और वो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है तो लैंडिंग नोट्स को जब गाना जहाँ से जो लाइन जहाँ ख़त्म होती है तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूँ वैसे ही करने की।
0: मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली,
2: हाँ, हाँ,
0: वो गाना सुनते हैं आपसे।

0: मैं वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ है म्यूजिक, चुराया
1: हाँ
0: हुआ
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन
0: नहीं
1: कमाल है कि
0: यस
1: इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और
0: यस
1: उसका जो म्यूजिक है, वो जो थीम है, वहां से उन्होंने
0: जी
1: क्या शानदार तरीके से उसको गाने में बदला है, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है।
0: एग्जैक्टली यस
1: तो ये गाना पूरा सुनते हैं रिकॉर्ड से।

0: गोविंद, अब आपकी तरफ आते हैं, तमाम तरह के शोज किए हैं, तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव, कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग या ऐसा कुछ?
1: हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी तो होता है। और काफी सारी फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए तो कई लोग, कई फीमेल सिंगर्स ऐसी थी जिन्होंने कोई कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था, तो मैं खाली उस इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा, मैं दो लाइन तीन लाइन आगे गा के फिर उनको सपोर्ट करता कि तो अभी तुम गाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये भी करना पड़ता है। मतलब आप भी ऐसा करते हैं?
2: नहीं, आमतौर से ऐसा कभी, यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है, कहीं हमारी गलती हो गई तो शायद उसने संभाल लिया, उसकी गलती हुई तो हमने संभाल लिया, पब्लिक को नहीं पता चले एज लॉन्ग एज, तो वो तो कोशिश तो करनी पड़ती है।
1: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया गाना हो जिसका रिहर्सल नहीं हुआ हो टाइम कम की वजह से, तो हमें फीमेल सिंगर को बोलना पड़ता है कि काउंटिंग करके मुझे बताना मेरा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है।
0: वाह वाह,
1: तो बता के वो पहले खाली ऐसे टच कर देंगे तो हम शुरू हो जाते हैं।
0: पब्लिक को समझ नहीं आता,
1: पब्लिक को समझ नहीं आता था ऐसा। बस
0: एक चीज और बहुत ही जरूरी बात जो मुझे लगता है कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत काम की होगी, और वो ये है कि आप दोनों लोग स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अदाबाजी के साथ नहीं करते हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे झुक गए, तिरछे हो गए, टेढ़ा मुंह कर लिया। आप लोग बहुत सलीके से और बहुत नफासत के साथ गाते हैं।
2: तो ये मेरे ख्याल से हम जिनके गाने गाते हैं, मुकेश साहब के, तो उनके गानों की डिमांड भी वही है कि अगर उनको उसी तरीके से गाना चाहिए जैसा हम गा रहे हैं। शायद अगर हो सकता किशोर कुमार जी के गाने गा रहे होते तो उसकी डिमांड वो होती कि उसके अंदर थोड़ी चंचल, थोड़ा सा उछल कूद, थोड़ा सा ऑडियंस में चले जाना, या वो वहाँ होता।
0: बिल्कुल गोविंद,
1: मैं तो मुकेश जी के वीडियोस जितने देखे हैं उसमें उन्होंने सब सीरियस होके गाए हैं,
0: वो तो हारमोनियम
2: लेके होते,
1: लेकिन वो एंट्री कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, वो चीज मैंने मुख्तार भाई से सीखा है।
0: मैंने क्या बात है?
1: काफी शोज इनके साथ किए हैं तो मैंने इनको सिर्फ नोटिस किया है कि ये कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे गा रहे हैं, कितनी सादगी से गा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने ये बात पूछी,
2: इसीलिए आज मॉडेस्टी
1: नहीं, मैं बस वो चीज इनसे ही मैंने सीखा है। और सिंगिंग में भी बोलूं तो मुकेश जी को मैं सुनता हूं, लेकिन मुकेश जी को सुनने के बाद एक बार इनको जरूर सुन लेता हूं।
0: क्या बात है,
1: इन्होंने कैसे गाया।
0: अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग मिलकर कोई गाना गाएं, तय कर लीजिए कि वो कौन सा गाना होगा। मुखड़ा अंतरा, दूसरा अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे, जितना अच्छा। आप गा सकते हैं। तो बताइए कि आप लोग कौन सा गाना चुन रहे हैं जिसमें एक शुरू करेगा, दूसरा उस गाने को आगे बढ़ाएगा, फिर अंतरे आएंगे।
2: यस, एक बहुत ही सच्चाई के पर लिखा हुआ जो गाना है, सज्जन रे झूठ मत बोलो।
0: क्या बात, शैलेंद्र जी का गाना, फिल्म का नाम तीसरी कसम, शंकर जयकिशन।
2: सज्जन रे झूठ मत बोलो खुदा के।

0: क्या बात है, कितना शानदार माहौल आप लोगों ने बनाया, कितना अच्छा लगा। ये गाना भी ऐसा है जो एक जिंदगी का जरूरी सबक सिखाता है।
1: जी।
2: आवारा हूँ आवारा जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में आज हमने एक विशेष पेशकश आपके सामने रखी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। इनसे बात की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। मुकेश जी से जुड़ी बातें और यादें इतनी सारी हैं कि इस कार्यक्रम का अगला भाग भी हम लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 4 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को पेश किया जुबैर खान ने। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: आज पिटारा लाया था।

0: आज के मेहमान।
1: आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: आताच आपण युववाणी हा युवकांसाठीचा कार्यक्रम ऐकला. ही आकाशवाणी पुणे केंद्राची निर्मिती होती. प्रसार भारतीच्या वेव्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. यानंतर ठीक 6 वाजता आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून हिंदीतून बातम्या आणि 6:05 इंग्रजीतून बातम्या प्रसारित होतील. त्या आम्ही सहक्षेपित करू.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है. लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया. पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की. इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है.
2: सरकार नीट पेपर लीक पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है. मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है. माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए.
1: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली. सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई. तब भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया. उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है. नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है.
3: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है.
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. न्यायालय ने अधिकारियों को CCTV फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है. पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है. दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है. दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा स्थिति के कारण झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है. इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की गई थी. राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया. उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं. विदेश मंत्री

लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और

0: पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने है और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने

0: सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्रों के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक

0: पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़क कर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में अगला गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं दान सिंह, फिल्म का नाम है माय लव।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: एक सूचना सुनिए। 23 जुलाई को हर साल हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में, तो इस अवसर पर कल विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। कल के इस खास सखी सहेली कार्यक्रम का फेसबुक लाइव प्रसारण भी हम करने वाले हैं, तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए अपने रेडियो सेट पर। और यह खास कार्यक्रम आप अपने मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं, तो सुनना ना भूलिए कल कार्यक्रम सखी सहेली।
5: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
6: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
7: कौन लाया, कौन लाया?
4: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश की आवाज में। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है मर्यादा।

आइए सुनते हैं इंदिवर का लिखा गीत। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, आवाज एक बार फिर मुकेश की। फिल्म का नाम है उपासना।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मुकेश की आवाज में। शब्द रचना है साजन दहलवी की, संगीत रचना श्याम जी घनश्याम जी की और फिल्म का नाम है ठोकर।

आइए सुना जाए अगला और अंतिम गीत, जिसे लिखा है कमर जलाल आबादी ने। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है छलिया, आवाज आप जानते हैं मुकेश की।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर।

0: रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
2: मैंने

0: सपने।
1: मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। 10वीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया।

यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप

सन 1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

0: प्यार है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम क्यों आए हैं। दरअसल यहाँ हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ

सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहाँ हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान, वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए।

ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नैन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

सन 1962 में चलते हैं, जब मनोज कुमार मुकेश की आवाज के जरिए पर्दे पर होंठ हिलाते हुए कह रहे हैं,

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुनगुनाए।

0: याद।
1: यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: जाना कहां।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
2: आज के फनकार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना

0: और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged that some individuals are attempting to use the students and youth as political tool to